एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न हुई, तू करता करना मैं नाही जा हो करी न हुई। बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहे आओ। तू सच्चा साहिब सिफत सवाले हो जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बातां जो किछ करना सो कर रहे आ। सो दर राग आसा महला पहला।

गावन तुतनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन।

सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाईयां, सिद्धा पुरखां कियां वड्याईयां, तुद विन सिद्धि किनै ना पाईया, कर्म मिलै नाहीं ठाकर हाईया, आखण वाला क्या वेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा,

भोग गुण एहो होर नाही कोए ना को हुआ ना को होए जेवड आप तेवड तेरी दात जिन दिन करके कीती रात खसम विसार है ते कम जात नानक नावै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जानु सतगुरु सतपुरखा बिनो करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई

मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपता सह, मिल संगत गुण परगास।

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उत्तम, जा आहर हर जीव परया। शैल पत्थर मह जंतु पाए, ताका रिजक वागे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न

तिस पाछै बचरे चरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाई।

सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा। सब त्याव है सब त्याव है तुध जी हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। हर त्यागो संतो जी सब दुख विसारण हारा।

वह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्या वह हर त्या वह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ ते आया जी तिन का पाओ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करह हर पूजा जी तप तपह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई।

आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल। जिस नौ तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेवया

सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेखह जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरड़ पहले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकज मुह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबियले, मन एक न चेत समूढ़ मना, हर

और श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रच्छा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काबहु आप हाथ दै मुहे बचाबहु सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा वो रक्षा निज कर दै करिए सब बैरन कौआ संगरिए पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दै मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझू करे हो रच्छा राख लिहो मुहि राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो भेद राज ब्रह्मा जूतियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदंतिक कै अवतारा सोई गुरु समझे हो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असतूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जाबुद करक करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंब आद नील अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको करपाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत।

सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे हम एक न जानेऊ। श्री असपान कृपा तुमरी कर, श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहूँ सब तू हिब।

अस गोविंद दास तुहार। सगल द्वार कहो छाड़ कै कहो तुहारो द्वार। बाहीं गहीं की लाज अस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परिया शब्द गावणे आईया। शब्दोता गावहु हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आ भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आ भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पई ओ सत संत

आहे बिरथा कोई न जाए जे आवै तुद आहे। श्लोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ सतगुर सेती रत्या दरगह पाई ऐठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो एह वथ दे जग मह उत्तम काढ़ी है विरले के महला पंजवा।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

0: पिंगुल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता अंदले त्रिभवन सूझया गुर भेट पुनीता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु
1: जी की फतेह। सत्कारयोग सत संगत जीओ सतगुरां दी अपार बख्शिश रहमत हुई तुसी बड़े प्यार सत्कार भावना दे नाल सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ बैठ के सोदै रहिरा साहिब दे पाठ सरवण कीते ने अरदास विच शामिल होए हो पावन पवित्र हुक्मनामा सरवण कीता सतगुरु कृपा करन साडा सारिआं दा गाव्या सुणिआ महाराज दर ते प्रवान करन इसे तरह गुरु चरणां नाल जुड़े रहिए। बेनती है गुरु घर दीआं दो बिल्डिंगां नॉर्थ हॉल एंड साउथ हॉल बन रहीआं ने आप संगतां वध चढ़ के सेवा कर रहे होर भी आप संगतां दे चरणां च बेनती जरूर दसवंदी कारपेटा कढ के गुरु घर दे विच सेवा करके गुरु दीआं खुशियां प्राप्त करिए जी। अज सत्कार जो भाई तारू सिंह जी का जन्म दिहाड़ा आप संगतां दे सहयोग नाल गुरु घर विच मनाया जा रहा है बहुत बहुत भाई साहब जी के जन्मदिन दीआं वधाईआं जी। अक्तूबर 12 तो लैके 18 तक इस गुरु घर की लाइब्रेरी में गुरमत कैंप लग रहे हैं नाम सिमरन अभ्यास होंगे आप संगतों के चरणों च बेनती जरूर समा कट के पहुंचने की कृपालता करनी। कैंप का समा है शामी 6 बजे तो लैके शामी 8 बजे तक जी। 17 अक्तूबर न कत्तक की संगरान का दिहाड़ा है 18 अक्तूबर गुरबाणी कंठ मुकाबले जो स्टॉकटन गुरु घर हो रहे हैं जिन्हों का समा है सवेरे 8 बजे तो लैके शामी 5 बजे तक जरूर हिस्सा ले सकते हो जी। 23 अक्तूबर जन्मदिन बाबा बुढ़ा साहब जी का आ रहा 27 अक्तूबर धन धन साहब श्री गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश पुरब जो आप संगतां दे सहयोग नाल इस पावन स्थान से बहुत वड्डे पद्धर से मनाया जाता इस साल भी 27 अक्तूबर मनाया जाएगा जरूर सहयोग बख्शिश करना जीओ। आव रात्रि के कीर्तन दरबारों की आरंभता हो रही है पहला कीर्तन कर रहे ने सत्कार योग भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी उन्हां वाले इन्हां तो बाद चल रही लड़ीवार जपजी साहब की कथा करनगे सत्कार योग भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी खुश दिल आखीर विच कीर्तन करनगे सत्कार योग भाई साहब भाई हरभजन सिंह जी लहरी साहब 8:30 बजे तक दीवान सजनगे जिन्हां कोल समा है जरूर सतगुरां की पावन गोद विच जुड़ बैठ के कीर्तन सरवण करिए जीओ। गुरु घर के होर प्रोग्रामां की जानकारी लैण वास्ते तुसी साडे गुरु घर के सकत्तर साहब सरदार राजेंद्र सिंह जी मंगर साहब हुणां नाल संपर्क कर सकदे हो उन्हां दा फोन नंबर है 408-712-4145 ते उन्हां नूं होर जानकारी लै सकदे। आओ आरती कीर्तन शुरू कर रहे ने भाई साहब जी गुरु के लंगर चल रहे ने छक के जाण दी कृपालता करन जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सीतो सीता महिमा माहे तांके रूप न कथने जाहे ना ओह मरे न ठगे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे।

0: सगल कटाके अंतर जामी
1: अपनी गत मित जन हो आपे
0: अपन संग आप प्रबराते
1: तुमरी उस्त तुम ते होए
0: नानक अवर ना जान सकुए
1: सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म
0: हर को नाम जप निर्मल कर्म
1: सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया
0: साध संग दुर्मत मल हिरिया
1: सगल उद्दम मह उद्दम भला
0: हर का नाम जप हो जी सदा
1: सगल वाणी मह अमृत वाणी
0: हर को जास सुन रसन।

0: पशुपति रमैया के गुण चेत परानी
1: कवन मूते कवन दृष्टानी
0: जिन तू साज सवार सिगारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारा दूध बिरद भया ऊपर साख सैन
1: यो
0: निर्गुण गुण कशु न बूझे जे प्रसाद धर ऊपर सुख बस है जे प्रसाद पीवे शीतल जल
1: सुखदाई पवन पाव कमला
0: जे प्रसाद भोगै सब रसा
1: सगल समग्री संग साध वसा
0: दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना
1: जय त्याग संरचना
0: ऐसे दुख मूड अंध ब्यापे
1: नानक कर लियो प्रभा
0: आद अंत जो रखन हार
1: इससे प्रीत न करे गवार
0: जाकी सेवा नव निद पावे
1: आसे मूड़ा मन नहीं लावे
0: जो ठाकुर साध सदा हजूरे
1: जानत दूरे
0: जाकी टहल पावे दरगह मान
1: से विसारे मुग्ध अजान
0: सदा सदा ए पूलन हार
1: नानक रखन वार अपार
0: रतन त्याग कौडी संग रचे
1: साच छोड़ झूठ संग मचे
0: जो छड़ना सो अस्थिर

0: अंधकूप में पतत बिकराल
1: नानक काट ले प्रभु दयाल
0: करतूत पशु की मानस जात
1: लोग बिचारा करे दिन रात
0: बाहर पेक अंतर मल माया
1: जब सुना है कछ करे सिपाया
0: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान
1: अंतर व्यापै लोभ सुवान
0: अंतर अगन बाहर

0: कहा बुझार तबू जय डोरा
1: कहे तो समझे पोरा
0: कहा बिसन पद गावे गूंग
1: यतन करे तो भी सर पांग
0: कह पिंगल पर्वत पर पवन
1: नहीं होत उहा उस गवन
0: करतार करुणा मैं दीन बेनती करे
1: नानक तुमरी कृपा करे
0: संग सहाई सो आवे न चीत
1: जो बराई पास्य प्रीत
0: अलुआ के ग्रह पीतर बस
1: आनंद केल माया रंग रस
0: दृढ़ कर मन मन है प्रतीत
1: काल आवे मूढ़े चीत
0: बैर विरोध काम क्रोध मोह
1: झूठ बेकार महा लोभ त्रोह
0: याहू जुगत बिहाने कई जन्म
1: नानक राख ले हो अपन कर कर्म
0: तू ठाकुर तुम पै अरदास
1: जियो पिंड सब तेरी राज
0: तुम मात पिता हम बारिक तेरे।

0: से आप न करे।
1: आवत जावत जन में मरे,
0: जिसके अंतर बसन अंकार,
1: जिसकी सीख तरह संसार,
0: तुम पाने दिन भर जाता,
1: नानक उन जन चरण पर आता,
0: बेनती पार मम सब जाने,
2: अपना किया आपे मन,
0: आपे आप करत नेरा,
1: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा,
0: आप ज्ञानम सकल ते रहत,
1: सब कछ जाने आत्म की रहत,
0: पावे तसलय लड़लाए,
1: आंतन कर रहा समाए,
2: सो सेवक जिस कृपा करी,
1: निमुख निमुख जापन।

0: जेहे प्रसाद शक्ति अमृत खाहे।
1: तिस ठाकुर को रख मन माहे,
0: जेहे प्रसाद सुगंधत तन लावे।
1: किसको सिमरत परम गत पावे,
0: जेहे प्रसाद बसे सुख मंदर।
1: तिसह त्याहि सदा मन अंदर,
0: जेहे प्रसाद गृह संग सुख बसना।
1: आठ पहर सिमरहु तिस रसना,
0: जेहे प्रसाद रंग रस भोग।
1: नानक सदा त्याहिए त्यावन जोग,
0: जेहे प्रसाद पाठ बटंबर हडावे।
1: तिसे त्याग कत अवर लुभावे,
0: जेहे प्रसाद सुख से सोई जय।
1: मन आठ पहर ताका जस गावी जय,
0: जेहे प्रसाद तुझ सब को मन।
1: मुख ताको जस रसन बखाना,
0: जेहे प्रसाद तेरो रहता धर्म।
1: मन सदा त्याहे केवल पार ब्रह्म,
0: प्रभु जी जब दरगह मान पावे।
1: नानक पात से ती घर जावे,
0: जे प्रसाद आरोग कंचन देही।
1: जिब लावो तिस राम स्नेही,
0: जे प्रसाद तेरा ओला रहत।
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत,
0: जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके।
1: मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताके,
0: जे प्रसाद तुझको न पूछे।
1: मन सास सास सिमरहु प्रभ ऊचे,
0: जे प्रसाद भाई दुर्लभ दे।
1: नानक ताकी भगत करे,
0: जे प्रसाद आपूखन पहरी जय।
1: मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय,
0: जेहे प्रसाद अश्व हस्त असवारी।
1: मन तिस प्रभ को कबहु ना बिसारी,
0: जेहे प्रसाद बाग मिलख तना।
1: राख पुरुए प्रभ अपने मना,
0: जिन तेरी मन मन तुनाई।
1: उठत बैठत साध तिस त्याई,
0: तिसे त्याई जो एक अलख है।
1: इहा उहा नानक तेरी रख है,
0: जेहे प्रसाद करे बन बोधान।
1: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान,
0: जेहे प्रसाद तू आचार व्यवहारी।
1: तिस प्रभ को सास सास चितारी,
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप।
1: सो प्रभ सिमरहु सदा अनूप,
0: जय प्रसाद तेरी निकी जात।
1: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात,
0: जय प्रसाद तेरी पत्र है।
1: गुर प्रसाद नानक जस कह,
0: जय प्रसाद सुनह कर्ण नाद।
1: जय प्रसाद पेख है बिसमाद,
0: जय प्रसाद बोला है अमृत रसना।
1: जय प्रसाद सुख सहजे बसना,
0: जय प्रसाद हस्त कर चल है।
1: जय प्रसाद संपूर्ण फल है,
0: जय प्रसाद परम गत
1: जे प्रसाद सुख सहज समावे।
0: ऐसा प्रभ त्याग और गत लागो,
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो।
0: जे प्रसाद तू प्रगट संसार,
1: तिस प्रभ को मूल न मन हो बिसार।
0: जे प्रसाद तेरा प्रताप,
1: रे मन मूड तू ताको जाप।
0: जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे,
1: तिस है जान मन सदा हजूरे।
0: जे प्रसाद तू भावे साज,
1: रे मन मेरे तू तास्यो राच।
0: जे प्रसाद सब की गत होए,
1: नानक जाप जपाए जप सोए।
0: आप जपाए जपाए सुनाओ,
1: आप गावाए सुहर गुण गाओ।
0: प्रभु कृपा ते होए प्रगास,
1: प्रभु दया ते कमल बिगास।
0: प्रभु सो प्रसन्न बस मन सोए,
1: प्रभु दया ते मत उत्तम होए।
0: सर्व निधान प्रभु तेरी माया,
1: आप हो कछु न किन्हु लय।

0: साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध के संग मुख उजल होत, साध के संग मिटे अभिमान,
1: साध के संग प्रगटे सो ज्ञान,
0: साध के संग बुझे प्रभ नेरा,
1: साध संग सोत निवेरा,
0: साध के संग पाए नाम रतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी,
1: साध की शोभा प्रमाण सुमानी,
0: साध के संग अगोचर मिले,
1: साध के संग सदा प्रफुल्ल,
0: साध के संग आवे बस
1: पंचा,
0: साध संग होए सब की रेन,
1: साध के संग मनोहर मैन,
0: साध के संग न कतहूं तावे,
1: साध संग स्थित मन पावे,
0: साध के संग माया ते पिन,
1: साध संग नाम प्रभु सो प्रसन्न,
0: साध संग दुश्मन सब मीत,
1: साध के संग माप नीत,
0: साध संग के सेव नहीं बैर,
1: साध के संग
0: नाही को मंदा,
1: साध संग जाने परमानंद,
0: साध के संग नाही हो ताप,
1: साध के संग तजे सवे आप,
0: आपे जाने साध बढ़ाई,
1: नानक साध प्रभु बने आई,
0: साध के संग न कबहू तावे,
1: साध के संग सदा सुख पावे,
0: साध संग बस अगोचर लह,
1: साधु के संग जर सहे,
0: साध के संग बसे थान ऊंचे,
1: साधु के संग मैल पूछे,
0: साध के संग दृढ़ सब धर्म,
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म,
0: साध के संग पाए नाम निधान,
1: नानक साधु के करवान,
0: साध के संग सब कुल उधार, साधु के संग सो तन पावे,
1: संते सबको बरसावे,
0: साध संग धर्म राय करे सेवा,
1: साध के संग सोपा सुर देवा,
0: साधु के संग पाप पलायन,
1: साध संग मत गुण गायन,
0: साध के संग सर्व थान गम,
1: नानक साध के संग सर्व जनम,
0: साध के संग नहीं काश काल,
1: दर्शन पेट तोत निहाल,
0: साध के संग कलूखत हर,
1: साध के संग नरक पर हर,
0: साध के संग इहा उहा सोहेला,
1: साध संग बिचरत हर मेला,
0: जो इच्छा सोई फल पावे,
1: साध के संग न बिरता जावे,
0: पार ब्रह्म साध रिद बसे,
1: ज्ञान गुदरे साध संग से,
0: साध के संग सुनो हर नाउ,
1: साध संग हर के गुण गाओ,
0: साध के संग न मनते बिसरे,
1: साध संग सर पन सरे,
0: साध के संग लगे प्रभ मीठा,
1: संकट कडीठा,
0: साध संग पे आज्ञाकारी,
1: साध संगत पही हमारी,
0: साध के संग मिटे सब रोग,
1: नानक साध मिटे संजोग,
0: साध की महिमा वेद ना जाने,
1: दिता सुने दिता वखियाने,
0: साध की उपमा ते हो गुण ते दूर,
1: साध की उपमा रही पार दूर,
0: साध की शोभा का नाही अंत,
1: साध की शोभा सदा बेअंत,
0: साध की शोभा ऊंच ते ऊंची।

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
1: जैसे जल में कमल अलेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
1: जैसे सूर सर्प को सुख
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृश्यमान
1: जैसे राज रंग को लागे तुल पवन
0: ब्रह्म ज्ञानी के तीर देख
1: क्यों बसदा को होता को।

0: नानक जिन प्रभ आप करे
1: ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ज्ञानी की सब ऊपर मया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया
1: ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट

0: स्वर्ग निवासी
1: कई कोट जन्म जीवे मरे
0: कई कोट बोजो नी फिरे
1: कई कोट बैठत ही खाहे
0: कई कोट बैठ सी
1: खले थक पाहे कई कोट किए धनवंत
0: कई कोट माया में चिंत
1: जह जह पाणा तह तह राखे
0: नानक सब कुछ प्रभु के हाथे
1: कई कोट पए बैरागी
0: राम नाम संतन लागे
1: कई कोट प्रभु कौ खोजंते
0: आत्म में पार बम लहंते
1: कई कोट दर्शन प्रभु प्यास
0: तिनको मिलियो प्रभु नास
1: कई कोट मांगे सतसंग
0: पार बम लागा रंग
1: जिनको हुए आप सो प्रसन्न
0: नानक ते जन सदा धन धन
1: कई कोट खानी अर खंड
0: कई कोट काल ब्रह्मंड
1: कई कोट हुए अवतार
0: कई बार पसरियो
1: कई जुगत कीनो विस्तार कई बार पसरियो पसार
0: सदा सदा एक ओंकार
1: कई कोट कीने बहु भांत
0: सते होए ब्रह्मा समात
1: ताका अंत न जाने कोए
0: आपे आप नानक प्रभु सोए
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास
0: तिन होवत आत्म प्रगास
1: कई कोट तात के बेते
0: निहारे को नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीवे
0: अमृत सत सदी जीवे
1: कई कोट नाम

0: अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै,
1: संत के दुखन जमते नहीं छुटै,
0: संत कै दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत कै दुखन मत होए मलीन,
1: संत के दुखन सो बाते हीन,
0: संत के हते कौ रखे न कोए,
1: संत के दुखन तान भ्रष्ट होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करै,
1: नानक संत संग निंदक भी तरै,
0: संत के दुखन ते मुख भवै,
1: संतन कै दुखन काग ज्यों लवै,
0: संतन कै दुखन सर्प जोन पाए,
1: संत कै दुखन तृप्त जोन क्रमाए,
0: संतन कै दुखन तृष्णा में जलै,
1: संत कै दुखन सब को चलै,
0: संत कै दुखन तेज सब जाए,
1: संत कै दुखन नीच नी जाए,
0: संत दुखी का थाओ को नाहे,
1: नानक संत पावे ता होई विगत पाए,
0: संत का निंदक महात ताई,
1: संत का निंदक खिंड कन्ना पाई,
0: संत का निंदक महा हत्यारा,
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
0: संत का निंदक राज ते हीन,
1: संत का निंदक दुखिया दीन,
0: संत के निंदक को

0: अनद रूप मंगल सद जाकै
1: सर्वलोक सुनिए कर्ता कै
0: राज मैं राज जोग मैं जोगी
1: आप मैं तभी सर्वस्व मैं भोगी
0: त्याय त्याय भगत है सुख पाया।

0: अपने सेवक को नाम जपाई,
1: अपने सेवक की आपत रखे,
0: बाकी गत में तो कोई न लखे,
1: अपने सेवकों को न बूचे,
2: अपने सेवक ऊंचे ऊंचे,
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया,
0: नानक सो सेवक दहत से प्रगटाया,
1: की कीरी मैं कर लखे,
0: भस्म करे लस्कर कूट लखे,
1: इसका साथ न काटे आप,
0: ताकौ रखत देकर हाथ,
1: मारे न
0: तिसके कर्तव्य वृथे जात,
2: मारे न रखे अवर न कोए,
0: सर्ब जिया का रखा सोए,
1: आए सोच करे रे प्राणी,
0: जप नानक प्रभु अलख बिडाणी,
1: बारंबार बार प्रभु जपिए,
0: पी अमृत हे मन तन तृपिय,
1: नाम रतंजन गुरम पाया,
0: किसके अवर नाही दृष्टाया,
1: नाम तन नामो रूप रंग,
0: नामो सुख हर नाम का संग,
1: नाम रज जप जंत।

0: तम प्रगास
1: तित कर जाए बसै अविनाशी
0: कहो नानक काटी जम्भासी
1: तत विचार कहे जन साचा
0: जन्म मरण सो काचो काचा
1: आवागमन मिटै प्रभ सेव
0: आप त्याग शरण गुरुदेव
1: यो रतन जन्म का हुए उधार
0: हर हर सिमर प्राण आधार
1: अनक उपावना छूटन हारे
0: सिमरत शास्त्र वेद विचारे
1: हर की भगत कर हो मन लाए
0: मन वंचित नानक फल पाए
1: संग न चाल सती रह तना
0: तू क्या लपटाव है मूर्ख मना
1: सोत मीत कुटुंब अर बनता
0: इनते कहो तुम कवन सुनाता
1: राज रंग माया बिस्थार
0: इनते कहो गवन छुटकार
1: अस हस्ती रथ अस वारी
0: झूठा डंफ।

0: हर की भगत करो मन मीत
1: निर्मल होए तुम्हारो जीत
0: चरण कमल राखो मन माहे
2: जन्म जन्म के कर विख जाह
0: आप जपहो अवरा नाम जपावहो
1: सुनत कहत रहत गत पावहो
0: सार भूत सत हर को नाओ
1: सहज भाए नानक गुण गाओ
0: गुण गावत तेरी उतरस मैल
2: जस जाए हो मैं दिख पैल
0: ओहे अचिंत बसै सुख नाल
2: नाम समाल
0: छाड़ सियानप सगली मना
2: सत संग पावहि सच तना
0: हर पूंजी संच करहो व्यवहार
2: सुख दर्ग है जयकार
0: सर्ब निरंतर एको देख
2: नानक जाकर मस्तक लेख
0: एको जप एको साला है
1: एक सिमर एको मन आहे
0: एकस के गुण गाओ।

0: दयालो
1: भक्त वशल सदा कृपाल
0: अनाथ नाथ गोविंद गोपाल
1: सर्व कटा करत प्रतपाल
0: आद पुरख कारण करतार
1: भक्त जना के प्राण आधार
0: जो जो जपस होए पुनीत
1: भक्त पाए लावे।

0: जब अकार एहो कशन दृष्टिता
1: पाप पुण्य तब कहते होता
0: जब तारी अपन सुन समाद
1: तब बैर विरोध किस संग कमात
0: जब इसका वर्ण चिहन न जापत
1: तब हर सोग कह सह व्यापत
0: अपनो आप पार ब्रह्म
1: तब वो कहा कि सोगत पर
0: अपन खेल आप भरतीजा
1: नानक करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रभ केवल तनी जब एक है हर अगम अपार
1: तब नरक स्वर्ग कहो कौन उतार
0: जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए
1: तब से सकर कहो के तठाए
0: जब आप है आप अपनी ज्योत तरह
1: तब कवन निडर कवन का डराए
0: अपन चल तो आप करने हार
1: नानक ठाकुर अगम अपार
0: नासी सुख अपने आसन
1: सहज मरण कहो कामनासन
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
1: तब जंगी त्राज कहोगे धोए
0: जब अवगत अगोचर प्रवेका
1: तब चित्र गुप्त कैसे पूछ लेखा
0: नाथ निरंजन अगोचर अगाधे
1: तब कौन छिपे कौन बन पाते
0: अपन आप ही अचर्जा
1: अपन रूप

0: पवन पाए बाप मित्र सोत पाई।
1: यह सर्व कला आप पे है प्रवीण,
0: सहेत देव पाहु जीन।
1: जब अपन आप और तार
0: तो जगन आप।

0: राष्ट्रपति आप कथ अब सुनने हार जात सुभावे ता श्रेष्ठ उपाय तुम ते भिन्न नहीं किश होए जाको प्रभ जियो आप बुझाए सो समदर्शी तत का बेता
1: सगल श्रेष्ठ का जेता
0: जी जंत्र सब तक हाथ जिस रख है तिस कोए न मारे
1: आज
0: तिस ताज अवर कहा को

0: अमृत बचन हर के गुण गाओ,
1: प्राण तन कर है सुहाओ,
0: आठ पहर प्रभ पे खूनेरा,
1: मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा,
0: सुन उपदेश हृदय बसावह,
1: मन इच्छे नानक फल पावह,
0: हलत पलत दोए लेहो सवार,
1: राम नाम अंतर उतार,
0: पूरे गुर की पूरी दिखिया,
1: जस मन बसा।

0: समाये।
1: ऐसे होए सो नाही बुरा,
0: पूरे कहो किने कश करा।
1: आप भला कर तो अत नहीं के,
0: आपे जाने अपने जी की।
1: आप साच धारी सब साच,
0: पूत पूत अपन संग राच।
1: आपकी गात में कही न जाए,
0: दूसर होए तसो जी पाए।
1: जिसका किया सब परवान,
0: गुरु प्रसाद नानक इहो जान।
1: जो जाना तस सदा सुख होए,
0: आप मिलाए लय प्रभ सोए।
1: ओ धनवंत कुलवंत पदवंत,
0: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत।
1: धन धन धन जान आया,
0: इस प्रसाद सब जगत तराया।

0: पार ब्रह्म निकट कर
1: सिमरहु गोविंद
2: मन अंतर की उत्तर चंद
1: आस अनित त्याग होत्रांग
2: संत जना की दूर मान मांग
1: आप छोट बेनती करो
2: साध संग अगन सागर तरह
1: सन के परले हो पंडार
2: नानक गुर पूरे नमस्कार
1: कुशल सहज आनंद
2: साध संग परमानंद।

0: यजमान बसा सहोत निदान
1: सर्विच्छा ताकि पूरन होए
0: प्रधान पुरख प्रकट सब लोए
1: सबते उज पाए स्थान
0: बहुत न होवे आवन जान
1: हर तन खाट

0: देव अनाथ मूरत सबहु सहज ताप
1: परम रूप पुनीत मूर्त पूरन पुरख पार
0: सर्व विश्व रचयो स्वयं भव कर्ण पंजन हार
1: कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख अधेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम
0: गर्भ गंजन दुष पंजन मुक्त दायक काम
1: आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत
0: गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत
1: अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार
0: सर्व लायक

0: तुह्यं प्रयात छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता
1: चतुर चक्र जाने चतुर चक्र जाने
0: चतुर चक्र भरती चतुर चक्र परती
1: चतुर चक्र काले चतुर चक्र काले
0: चतुर चक्र पासे चतुर चक्र बासे
1: चतुर चक्र माने।

0: स्वप्रसाद कथते के आचिज दिस के आपिज पिस
1: के
0: आपिज लुक के आदित सुक
1: राजन
0: प्रमाहे के तरमंग तुझा है
1: के अशोक वर्ण के सर्वा वर्ण
0: के जगतं कृति है के शत्रंग क्षत्रिय।

0: सर्वत्र पौन
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
0: के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साजा
1: के सर्वत्र दीन के सर्वत्र लीन
0: के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
0: के सर्वत्र काल के सर्वत्र पाल
1: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
0: के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
1: के सर्वत्र काज के सर्वत्र राजा
0: के सर्वत्र सोखा के सर्वत्र भोखा
1: के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण
0: के सर्वत्र देशा के सर्वत्र पेशा
1: के सर्वत्र मान सदैव प्रधान
0: के सर्वत्र जाप के सर्वत्र ताप
1: के सर्वत्र पान के सर्वत्र मन
0: के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
1: के सर्वत्र

0: समस्त अधीश हैं,
1: जमीन
0: जमा है, अमीकुल इमा है, के अचलंग प्रकाश है, के अमितो सुवास है, के अमितो पसा है, के आत्म प्रवाह है, मद भाषण प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गन मुदाम अन गन प्रणाम मुन मन सलाम अन पवनाश मुन मन प्रकाश।

पीठ धर्म आतटीठ कर्म हर बोल मना चंदा प्रसाद करुणाल है अरकाल है जगतेश्वर है परमेश्वर है तृत के तरण है जग के करण है।

0: हरे भगवान के भाए कृपा हो ते एक रती बनो एक रती के
1: तिम तंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारी
0: कोट तुरंग पुरंग से कोदत पावन के गौन को जात निवारे
1: भारी कुजान के भूख पली बेदन्या।

0: जाएंगे, सत्तर समय अवलोक जपाएंगे।
1: मानव इंद्र गजेंद्र निराधप जौन कर लोक को राज करेंगे।
2: कोटि स्नान गजार कदान अनेक सौंदर काज करेंगे।
1: ब्रह्म महेश्वर विष्ण सची पत अंत फसे जम फास परेंगे।
0: ये नार श्री पद के प्रास हैं भागवते नार फेर ना देह तरंगे।
1: कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो

0: बचाए,
1: कृपा करी हम पर जग माता,
0: ग्रंथ करा पूर्ण सब राता,
1: सकल देखो हरता,
0: दुष्ट दोखियन को क्षा करता,
1: श्री तुझो पै दियाला,
0: पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला,
1: मन बासत पल पावे सोई,
0: दुख ना दशा व्यापत कोई,
1: सुने गंग जाय सरसना पावे,
0: सुने मूढ़ जत लाए चतुरता आवे,
1: दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहे,
0: हो जो या की एक बार चौपाई को कहा चौपाई,
1: संभ सतर सैस्त नीजे,
0: अर्ध सहत फोन तीन के नीचे,
1: सुधी अश्मीर वारा,
0: तीर सद्रव ग्रंथ

0: जन सब तुद उपाय इक वेक परसने आया।
1: लाभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया।
0: कहे नानक जिसनु आप तुठा तिनम मृत गुर ते पाया।
1: भगता की चाल नराली चाला नराली भगता केरी बेगम मार्ग चलना।
0: लाभ लोभ अहंकार

0: मन निर्मल सदा रह गुरु नाले।
1: ये को सिख गुरु सिद्धि सन्मुख होवा होवा ता सन्मुख सिख कोई ये हर है गुरु नाले।
0: के चरण हृदय त्याई अंतरात्म है सुमाले।
1: आप छाद सदा रह पारण गौरबन अब न जान कोई।
0: कहे नानक सुनहु संतहु सो सिख सन्मुख हो।

0: नित सखिए सोग दुख न व्यापे
1: गुर चरण लागे दिन सभागे अपना कर जापे
0: अनहत बाणी

अपने टहलियां दे सिर ते मेर भरिया हथ रखना। काम क्रोध लो मोह हंकार तू बचा करके भावना श्रद्धा सहत दर घर दी सेवा दे योग बना लेना। हर मैदान फतेह बख्शिश करनी सदा चढ़ दी कला बख्शिश करनी अंग संग वर्त।

चार पै रहन सुख भाने अंदर बतीत हुई है। दिन चढ़े अपने भाने अंदर बतीत करवाना सतगुरु जी इस वक्त दीवाना दी संपूर्णता नु मुख रख दे आप जी के हजूर। कड़ा प्रसाद दी देग हाजिर है जी दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या होवे। कृपा करो पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी हुक्म ते चलण दी मत बुद्ध।

पहवे सूरज पहवे चंद कोह करोड़ी चलतनान पहवे सिद्ध पुर सुरनाथ पहवे चाडाणी आकाश पहवे जोध महाबल सूर पहवे चावे जावे पूर सगले आप लिखिया सिरले।

सेवक सेवा करम चढ़ाओ पिनी रणजना मंचाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी करम लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत अनंत लाटू मादानियान गा।

रंग हसे रंग रोवे चुप पे कर जाए पर किसे केरी माज सचे नाट ऊपर खर्च मंगा

0: तेरी शरण मेरे दीन दयाल, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला, कर कृपा नानक गुण गावे, राखो शर्म असाड़ी जीव, जिथे नाम जपिए प्रप्यारे, से अस्थल सोयन चोबारे, हे पाई ओ हिरदा रूपी कर होए, संसार रूपी कर होए, जिथे भी उस माल प्रोदी सिलसिला हो रही है ओ था पवित्र है, सो इनिक सेवा प्रवानकनी हुई है, पुला चुका दिखी मा। आओ अगले प्रोग्राम सरण करी दी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: तुमरी शरण समारी आसा, तुमरी सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, नान करके गोले। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी राही दरबार दियां हाजरियां भर के कथा कीर्तन सरवण करके बख्शां लहरी, परम सकार जो सात संगत जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन भाई साहब रिशपाल सिंह सरवण कीर्तन जत्था, जिन्हां ने आप जी राही बाण दे रस पिंत ने कीर्तन सरवण कराए ने, उन्हां दा हार्दिक हार्दिक धन्नवाद जी। सूचनावां जल्दी जल्दी जिहड़े घरां च आपां ने सहज पाठ रखे सी, ते नाल प्रबंधक कमेटी वलों जो चल रहा सी इत्थे सहज पाठ, उह ते उन्हां सारिआं दे भोग पैणगे जी 25 अक्टूबर नूं ऐतवार नूं 10 बजे मेन हाल च इत्थे जी। ते उस तों अगे चलीए, संगरांद 17 तरीक नूं आ रहे जी कथक दी, ऐस आउंदे हफ्ते दे विच शनिचरवार नूं। बाकी सूचनावां मैं सारियां छड जाणियां, एक दो कर लवां। बंदी छोड़ भाव दिवाली हैगी है जी 8 नवंबर नूं, ते संत गुरु नानक साहिब जी का प्रकाश आ रहा जी 9 नवंबर 24 नूं, ते नाल शोक समाचार खालसा स्कूल का एक बहुत ही वधिया सेवादार भाई महेंद्र सिंह कल पूरे हो गए ने, उन्हां दे फ्यूनरल दे वास्ते सेवा करने संगतां नूं बेनती की जाती है जी। हुण गुरु नानक खालसा स्कूल के बच्चे बच्चियां ने कीर्तन का समां लिया हैगा अज 12 बजे तक। मैं बेनती करां सत्कारयोग भाई साहब भाई अपने नरेंद्रपाल सिंह जी नूं कि उह स्टेज संभालणगे क्योंकि इंचार्ज ने कीर्तन दे। आओ हुण मैं उन्हां नूं बेनती करां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

0: आओ बच्चो शुरू करो जी, वी आर रेडी, पते बुलाओ।
1: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

सच्चीतक साल जिन को नदर कर्म तिन कर नानक नदरी नदर निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। परम सन्मान सत्कारयोग साध संगत जी, आप जी वडभागी हो, हफ्ते

है खोज शब्द में राज करेगा खालसा आकी रह न ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहे गुरु नाम।

आवाज उची कर देना ते पसी पिच नहीं हाई करनी, सुर मिला के गाना है। सो कुछ बच्चे बिना पिच नू मिलाए वो गा रहे हैं, सो इतना उची नहीं करना, आवाज मैच करनी जरूरी होती है। ठीक है जी। सो हुण असी पाठ करना है पंज पौड़ियां दा, सारे मिलके बोलो जी।